50 साल बाद देखा, लेकिन देखने वाले उसी दिन देख चुके थे। फिर उसके चंद दिन बाद जब रसूलुल्लाह की रहलत हुई और अमीरुल मोमिनीन को इतना तन्हा कर दिया गया, तो उसी दिन अम्मार यासिर, सलमान फारसी, अबू जर गफ्फारी, हम ये नहीं कह रहे सिर्फ जनाब जहरा, नहीं, बल्कि ये रसूलुल्लाह के असहाब भी देख चुके थे कि इस इनकार और अमीरुल मोमिनीन की इस तन्हाई का नतीजा कहाँ तक जाने वाला है। तो करबला, यह जुमला आप सुनते रहते हैं, मैं खाली इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से, कि करबला का आगाज 60 हिजरी में नहीं हुआ है, 27 रजब या 28 रजब या 26 रजब को नहीं हुआ है, ये तो ज़ाहरी आगाज है। करबला का क़याम, करबला का इनकलाब, उसका ज़ाहरी आगाज ये है कि जब यजीद बैत तलब कर रहा है, लेकिन उसका हकीकी आगाज, उसकी हकीकी शुरुआत 50 साल पहले उसी वक्त हो गई थी कि जब उस निजाम का इनकार किया गया जिसको रसूलुल्लाह ने पेश किया था, इमामत के निजाम का, विलायत के निजाम का, जो किसी हद तक हमारा राबिता है, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इन्हीं मजलिसों के जरिए से, इन्हीं अय्याम अज़ा के जरिए से, जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के जरिए से ये राबिता और कवी हो। बिल्कुल ये आप हरगिज़ तसव्वुर ना करिएगा कि हम तो बड़ी मजलिसें कर लेते हैं, चंदा भी दे देते हैं, तबर्रुक भी इंतजाम कर देते हैं, अभी बता रहे थे माशाल्लाह कई कई तबर्रुक आ जाते हैं, तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, जितना भी जो भी अहतमाम किया जाए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये सब करके कभी भी हम ये ना तय कर रहे इतनी मजलिसें पढ़ के, इतने अशरे पढ़ के, इतनी मजलिसें करके, इतने तबर्रुक बांट के करबला का हक अदा हो गया और विलायत का राबता हमारा मुकम्मल हो गया, नहीं, ये तो सब आगाज़ है अजीज़ो। ये तो हम अच्छे तरीके से अभी समझ सकते हैं कि हमारी विलायत में और जिन्होंने शहादतें दी हैं उनकी विलायत में कितना फ़र्क है, ये तो अभी भी समझ में आता है, बहुत ही आसानी से समझ में आता है। तो हम अपने ज़मानों का मसला अभी हल कर ले तो बड़ी बात है, वरना तारीख में बहुत ही अजीम इंसान गुजरे हैं। तो मैं आपको फिर वापस ले आता हूँ उस मंजिल की तरफ कि वो भी दिन शनिचर का दिन था, 27 रजब थी, कल जो मैंने आपके सामने पेश किया वो जुमे का दिन था, 26 रजब गुजर चुकी थी, रात का वाकया था जब वलीद के दरबार में मरवान की मौजूदगी में हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह के साथ वो बदकलामी की गई और जिसके जवाब में इमाम ने वो पहले आगाज के सबसे पहले जुमले पढ़े थे। और हर साल ये आप सुने और बार बार सुने, जितना गौर कर सके उस पर गौर करें, और गौर करना और सुनना अहम नहीं है, असल में उस मंजिल तक पहुंचना है जब इंसान को ये समझ में आने लगे कि राह हुसैन इब्न अली पे चलने का मतलब यह है कि किसी भी यजीद की बैत ना की जाए। ये जुमले हरगिज़ सवाब के लिए नहीं है, सवाब आपके मसला यहां बहुत पढ़ा जा चुका है माह रमजान में, लिहाजा हम नहीं छेड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये बात कह दी गई थी, लखनऊ में शायद कही गई, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है क्योंकि अभी बहुत सारे मसाइल वहां पे चल रहे हैं। कि एक मिसाल दी गई थी और उस मिसाल से कुछ लोग, बहरहाल कौम की हालत जो है वो आपको मालूम है, अभी हम उधर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अजीज़ो, ये सब ये नहीं है कि करबला के आगाज़ में हमने कुछ करबला का जिक्र कर लिया, कुछ करबला की बातें कर लीं तो एक सवाब का मरहला तय हो गया, एक रस्म अदा हो गई। जब तक उस हकीकत तक इंसान नहीं पहुँच जाता, जब तक हुसैन इब्न अली के उन उसूलों को अपने वजूद से दर्क नहीं कर लेता, जब तक उसे अपनी रूह का हिस्सा नहीं बना लेता, जब तक ये अपने वजूद से ना समझ ले कि हमेशा यजीदों की तरफ से बैतों का सवाल रहेगा, लेकिन कोई रहेगा हमेशा जो राह हुसैन इब्न अली में चलने वाला है, तो मुसलसल बैतों से इनकार करता रहेगा। मिसली ला युबायो मिसला का मतलब ये है, यानी एक सिलसिला, यानी सन 60 हिजरी नहीं, ये 61 हिजरी का वाकया भी नहीं है, ये सन 60 हिजरी नहीं बल्कि कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए हुसैन इब्न अली ने ये उसूल बता दिया था। आज जो गुफ्तगू है उसके अंदर बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन इरादा ये है इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे कि इन चंद दिनों में, 10 दिनों में आपकी खिदमत में इमाम हुसैन इस्लाम के चंद कलमात से भी आगाही हो जाए, बहुत ही अजीम कलमात, और एक कलमे में कम से कम एक करबला का बहुत ही बुनियादी कानून और एक

0: प्रिंसिपल कर्बला का, एक असल कर्बला की हमारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ख्वातीन के लिए तय हो जाए। अजीजो, अगर एक मुहर्रम में, एक साल के मुहर्रम में हमें कर्बला के 10 उसूल भी मालूम हो जाएं, जो चंद सालों के गुजरते गुजरते कम से कम पूरी दुनिया के शियत राह हुसैन इब्न अली पे गामजन हो जाएगी, और उसके नतीजे और असरात भी, जो मौजूद यहां पर है, उसके असरात भी दिखना शुरू हो जाएंगे। आज जो गुफ्तगू है वो 27 रजब की है, यानी शब गुजर गई है, शब मुश्किल से गुजरी हुई है। 27 रजब की सुबह थी, इमाम निकले और मदीने की गलियों से, जाहिरन कोई बहुत दूर की बात नहीं थी, गलियां सब करीब ही करीब थी, वो आज का मदीना नहीं था, पहले का मदीना था, और पहले का मदीना जो पूरा, अभी जितना पूरा मदीना था वो सब के सब अभी जितनी मस्जिद दिखती है, मस्जिद के जो सहन दिखता है उसी में सिमटा हुआ था। थोड़ी सी आबादी अलग से थी जो यहूदियों की थी, वरना मदीना कोई इतना बड़ा नहीं था। अभी तो सहन में वो सकीफा का मैदान भी आ गया है जो बाहर माना जाता था, है ना। अब जो लोग मदीना जा चुके, इंशाल्लाह नसीब हो आप सबको मदीना जाना, कल मसाहिब में भी अर्ज किया था, और इंशाल्लाह बेहतर हालात में जाना नसीब हो, तो अभी सकीफा का मैदान भी वो पीछे वाले सहन में आ चुका है, बल्कि मस्जिद इमाम अली अलैहिस्सलाम जो अभी तकरीबन हरम से मिली हुई है वो बाहर की मस्जिद थी, वहां पर बकरीद की नमाज, ईद की नमाज पढ़ने जाती थी, जो बाहर आमतौर से नमाज पढ़ी जाती थी, है ना, या बारिश की नमाज मस्जिद गमाम बिल्कुल अभी सहन के सामने ही है, तो वो बाहर की, बाहर का इलाका था कि जहां पर रसूलुल्लाह नमाज पढ़ने जाते थे, या अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ने जाते थे, या रसूलुल्लाह के असहाब नमाज पढ़ने जाते थे, वो सब बिल्कुल अब हरम से मिलती मिलती जगह हुई। तो इतना ही छोटा सा मदीना था, इमाम अपने घर से निकले और निकल कर थोड़ा सा आगे बढ़े थे कि फिर मरवान से मुलाकात हो गई। सुबह का वक्त था और मरवान से इमाम की मुलाकात हुई, सनीचर का दिन था, और आकर इमाम से वो कहता है कि मैं आपके लिए खैरखा हूं, मैं आपके लिए नासे हूं। अल्लाहु अकबर, कौन कह रहा है? मरवान कहता है कि मैं आपको एक अच्छी नसीहत, माज़ल्लाह खैरखाही करना चाहता हूं। नसीहत का लफ्ज़ उर्दू में कुछ और है लेकिन अरबी में इसी माने में होता है, जो आपकी दुनिया के लिए भी अच्छी हो और आपकी आखिरत के लिए भी अच्छा हो। कौन कह रहा है ये? मरवान कह रहा है। इमाम ने कहा क्या कहना चाहता है? उसने कहा कि यजीद की बैत कर ले, इसी में आपकी दुनिया की भी भलाई है और आखिरत की भलाई है। हाँ, मैं यहां पर ठहरूंगा नहीं, लेकिन मुमकिन है कि आपके जमाने में भी आपको आकर ऐसे मशवरे दिए जाएं कि उस जमाने की यजीद को जो भी कहना हो कहो, लेकिन आज की यजीदों की बैत ही करके रहो। खैर इसी में है, बेहतरी इसी में है। वो अच्छा है ना कि एक ऐसा यजीद जो मर गया है, जिसकी कब्र का भी पता नहीं है, जो खत्म हो गया है, उसके ऊपर लानत भेजने में क्या मुश्किल है? वो तो आसानी से भेज सकते हैं। तो ये तो बहुत बढ़ चढ़ के लानत भेजी जाती है, तो वो यजीद क्या कर लेगा? लेकिन कमाल ये है कि अगर उस यजीद को पहचान लिया है तो आज के यजीदों के साथ रवैया क्या है?
1: मुर्दाबाद मुर्दाबाद,
2: अमेरिका मुर्दाबाद,
1: मुर्दाबाद मुर्दाबाद,
2: इस्राइल मुर्दाबाद।
0: तो मैं एक जुमला सिर्फ कह के आगे बढ़ना चाहता हूं कि मरवान के इस जुमले के जरिए से आप कम से कम अपने आसपास के, मरवान तो नहीं कहना चाहिए किसी को, लेकिन मरवान का किरदार अगर कोई आपके पास लेके आए और आपको मशवरा देने लगे कि हालात ऐसे हैं, मुश्किलात ऐसी हैं, आखिर तुम्हारा आपका बिजनेस है और फलां चीज है और बड़ी मुश्किल हो जाएगी और मुसलमानों की हालत खराब कर दी गई है, तो फिर इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि बैत कर लो। तो जब इस तरह बैत के सवाल कोई आके समझाना शुरू कर रहे, तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि तू मरवान तो बन के नहीं आया है भाई मेरे पास, है ये मरवान ही का मशवरा हो सकता है। कि अब जाहिर है कि ये तो नहीं कहेगा, हुसैन इब्न अली को देख रहा है, तो उसी एतबार से कि आपकी आखिरत के लिए अच्छा है मरवान। अल्लाह अकबर, मरवान इमाम हुसैन की आखिरत को बताए, मरवान आए इमाम हुसैन की आखिरत का मशवरा दे। जैसे आपके सामने

कि वो कौन सी आइडियोलॉजी है जिसके नतीजे में ऐसे इंसान पैदा होते हैं। ये मौजज़ा होकर गुजर गया, अभी हम आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत बुरी तारीख में कोई ऐसा गिरोह तो निकाल के ले आए, दिखाएं। अभी तो हम थोड़े थोड़े लोग हैं, वो जनाब तालूत का थोड़ा सा लश्कर, कितने 35-40 लोग बचे थे, कितने लोग बचे थे, तारीख के इन वाकयात को पेश करते रहे। लेकिन ये तारीख में नहीं हुआ है कभी कि इस तरह से इतने अज़्म के साथ, इतने मजबूत इरादों के साथ, इतने बड़े पैमाने पे, इतनी बड़ी तादाद में, इतने वसी मैदान में, इतने बड़े आलमी मसले में आकर इस तरह से हक की बात को पेश किया जाए और राह हुसैन इब्ने अली का नमूना पेश किया जाए कि सारी दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इमाम ने क्या फरमाया, इमाम ने यहां पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का जो कलमा पढ़ा वो अपने लिए नहीं पढ़ा। अगरचे इमाम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, यानी कि बाद में आएगी, बहुत बड़ी मुसीबत इमाम पर आ चुकी है और मुसलसल आने वाली है, लेकिन इमाम ने अपनी मुसीबतों को देख के ये जुमला नहीं पढ़ा था। इमाम ने इस्लाम और उम्मत की मुसीबत को देख के पढ़ा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों, बात का जुमला क्या है, वअलल इस्लाम अस्सलाम इज़ क़द बलियतिल उम्मह बिराइम मिस्ल यज़ीद। इस्लाम पर तो फातिहा, इस्लाम पर फातिहा पढ़ ले, इस्लाम पे सलाम हो, इस्लाम तो खत्म है अगर एक उम्मत को यजीद जैसा हाकिम मिल जाए। इस्लाम खत्म है अगर इस्लाम का हाकिम यजीद जैसा हो, तो इस्लाम खत्म है। अगर किसी मुल्क का हाकिम यजीद जैसा हो, तो वह मुल्क भी खत्म है। अब हमारे मुल्क की खुदा खैर करे, इंशाल्लाह खुदा खैर करे। लेकिन अमेरिका का तो ले गया, अमेरिका का यजीद अमेरिका को ले गया। बहुत देखेंगे आप, 2-4 सालों में बहुत कुछ देख लेंगे। ये रहबर शहीद 1.5 साल पहले अपनी एक तकरीर में, बल्कि 7-8 साल पहले भी बहुत ज्यादा तफसील कह चुके, बहुत ही वजाहत से ये सारी बातें बयान करके गए देर तक। आमतौर से इन मसाइल को थोड़ा मुख्तसर बयान करते थे, लेकिन वो तकरीबन 1.5 साल पहले की एक तकरीर में बहुत ही वजाहत से पूरा बयान करके यूरोप का क्या आलम होने वाला है देख लिया। अभी यूरोप जो पूरी दुनिया में कभी हुकूमत करता था, बहुत पहले की बात नहीं है, सदी 2 सदी पहले जो पूरी दुनिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पूरा अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, सब कुछ इस यूरोप के कंट्रोल में था। अभी कोई यूरोप से पूछने ही नहीं जा रहा है कि दुनिया के मसाइल में तुम भी कुछ रखते हो हैसियत, तुम्हारा भी कोई है, तुम्हारी भी कोई हैसियत, कुछ नहीं, कोई हैसियत नहीं। लोग समझ रहे नहीं अमरीका तो भी बहुत कुछ है, नहीं कुछ नहीं भाई। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप अंजाम देख लेंगे, जो तीन साल बाद बनी उमैया के यजीद का अंजाम हुआ था, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो देखेंगे कि आज के यजीदों का अंजाम भी शायद 3 साल भी नहीं लगे। कोई भी यजीद हो, यजीदों को ढूंढना आपका काम है, यहीं से ढूंढना शुरू करें। हाँ, पूरे दुनिया के यजीदों को ढूंढ डाले, वो अगर सर पे आकर गमछे लगा के और अकाले बांध के और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए, तो उसमें भी ढूंढे हैं कि रसूलुल्लाह के हरम के साए में, खादिमुल हरमैन के साए में कहीं कोई यजीद तो नहीं पल रहा है, उन यजीदों को ढूंढे। और जब कहा जाए कि यजीद पे लानत भेजे, वो जुमला रह गया था, तो सिर्फ मुर्दा यजीद पे लानत भेज के खामोश नहीं हो जाए कि ये तो बहुत ही आसान काम है, मरा हुआ क्या कर लेगा। आज के यजीदों को देखे, अभी हमारे एक भाई जो है रास्ते में कैरत में आ रहा था, तो कह रहे थे कि पहले ज़माने में लोग दरबारों में रहते थे, और जब दरबारों वाले लोग, उन्हीं को ज़्यादा मिंबर पर भेजा जाता था। बनी उमैया के ज़माने में मिंबर किसे मिलता था? बनी उमैया के ज़माने में हुसैन इब्ने अली को मिंबर नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। 35 सालों तक इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम करबला के वाक़े के बाद इमाम के तौर पर मौजूद रहे, लेकिन कभी भी मदीने का मिंबर इमाम सैयद सज्जाद को नहीं मिला, नहीं मिलता था भाई। मिंबर मिलना तो दूर की बात है, उधर कहीं कोने में मस्जिद में बैठ के दर्श नहीं दे सकते थे, हदीसें नहीं बयान कर सकते थे, तो मिंबर किसे मिलता था? मिंबर उसे मिलता था जो दरबारों के चापलूस हुआ करते थे। दरबारों के चापलूस मुल्ला और मौलवी

उनको मेंबर मिला करता था। तो ये ना देखे कि मेंबर पर कोई भी आ गया तो बस मेंबर पे आ गया। मेंबर ये हमारा मेंबर इतना मुकद्दस नहीं है जितना रसूलुल्लाह का मेंबर मुकद्दस था, लेकिन मेंबर से कोई मुकद्दस नहीं होता है। मेंबर पर आने से कोई मुकद्दस नहीं होता है, मेंबर पर क्या बयान किया जाए इससे कोई मुकद्दस होता है। समझ रहे हैं? तो बहुत ही अच्छी बात कह रहे थे कि बताएं लोग, हम आपके

हम हम तो हमने दिल में सोचा कि हम तो ये बात बताते ही रहते हैं, चले आज आपकी तरफ से बता देते हैं आप लोगों मोमिनीन को कि हाँ, हर मिंबर को मुकद्दस नहीं समझ लिया जाए, हर बयान को मुकद्दस नहीं समझ लिया जाए। अब हमें भी चेक करते रहें, सबको चेक करते रहें, उसूलों पे चेक करते रहें, और उसूल कहीं से नहीं लेना है। ये सवाल बार बार करते हैं लोग कि कहाँ से हम समझे, हम जवान हैं, हम तो मौलवी नहीं हैं, हम तो कुम नजफ में नहीं पढ़े हुए हैं, तो हम कहाँ समझे। तो अजीजों, एक एक जिम्मेदारी रसूलुल्लाह दे के चले गए हैं, सिर्फ उसी को पूरी कर ले, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। क्या इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैन किताब अल्लाह व इतरती, कुरान को समझते चले जाएं, कुरान के उसूलों को समझते चले जाएं, और अहले बैत के तरीके जिंदगी को समझते चले जाएं। कुरान और अहले बैत के जिंदगी के साय में हर इंसान को पहचानना आसान होता चला जाए। न खानदानों से पहचाने, न बड़े अमामों से पहचाने, न बड़े अच्छे लिबासों से पहचाने, न बड़े ऊंचे मिंबरों से पहचाने, बल्कि कुरान से पहचाने और अहले बैत के अमल और किरदार के जरिए से पहचाने। ये एक कानून अपने पास बना के रखेंगे तो कभी भी धोखा खाने वाले नहीं अजीज़ों, समझ रहे हैं। फिर इमाम ने क्या फरमाया, अलल इस्लाम अस्सलाम इज कद बुलियतिल उम्मा बिराएं मिसल यजीद। चंद कलमे पढ़ लेते हैं फिर एक मतलब जल्दी सर्ज करें। घड़ी पे मेरी निगाह रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप घड़ी नहीं देख रहे हैं। एक सलावत पढ़े मेरे मोहम्मद व आले जज़ाकअल्लाह। वो चमन उजाड़ा ही इसलिए गया था ताकि इस्लाम को हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी मिल जाए। उसके बाद इमाम ने फरमाया कि लकद समयत जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिह यकूल। मैं अगर सलवात ना भी पढ़वाऊँ तो भी रसूलुल्लाह के नाम पर, अहले बैत के नाम पर सलवात मैंने खुद रसूलुल्लाह से कहते हुए सुना हुआ है। चूंकि इमाम हुसैन अली के फर्जंद हैं, जनाब जहरा के फर्जंद हैं, हमारे बच्चों की तरह से नहीं है कि एक छः साल का बच्चा सुनेगा तो उसे याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। ये फर्जंद है अमीरुल मोमिनीन। छः साल का बच्चा अगर इमाम हो जाए 7 साल 8 साल का, तो दुनिया के बड़े से बड़े मसाइल को हल करता है। तो रसूलुल्लाह की उम्र में इमाम हुसैन सलाम की ज़िंदगी यही थी, उम्र इतनी थी। लेकिन ये और भी कई सारी रवायतें हैं जो बाद आपके सामने पहले शब्द कभी पेश की गई होंगी दीगर उलमा के ज़रिए से। यहाँ पे फरमाया इमाम ने कि मैंने खुद अपने जद रसूलुल्लाह से ये कहते हुए सुना है कि यकूल, आप फरमा रहे थे, अलखिलाफ़त मुहर्रमतुन अला आल अबी सुफियान, खिलाफत आल अबी सुफियान पर हराम है। आल अबी सुफियान पर खिलाफत हराम है। ये उस ज़माने के आल अबी सुफियान, आज के भी आल अबी सुफियान को समझ लें, उन पर भी हराम ही है। और हराम को जब जायज़ करार दे दिया जाता है तो नतीजे क्या होते हैं, उस ज़माने के नतीजे भी और आज के नतीजे भी आप देख रहे हैं। वही हक अतामुरनी बेबैयत यजीद वहुआ रजुलुन फासिक। वाह है तुझ पर ए मरवान, तू मुझे यजीद की बैयत की बात कर रहा है जबकि वो इतना फासिक है, ऐसा खुला हुआ फासिक है। लगत खुलत शततम मिनल कौल या अजीम अद्दुलल, ए बदबख्त ए पस्त। कि कुछ लोग इतने पस्त होते हैं कि जिनको पस्त कहना भी कम है, समझ रहे हैं। यानी सिर्फ पस्त कह देना, घटिया कह देने से बात पूरी नहीं होती है। तो मरवान का मसला भी ऐसे ही था। वो रसूलुल्लाह जो इस कदर रहमत वाले थे कि पूरे मक्के को माफ कर दिया, ये कहते हो अंतुम तुलका, जाओ तुम आज़ाद हो, जंग जीत गए, फतेह मक्का हो गई, तुमने 8 सालों तक हमसे जंग की है लेकिन अंतुम तुलका, जाओ जाओ आज़ाद हो, कोई सजा नहीं, कुछ भी नहीं, चले जाओ। उधर साहब ये आवाज बुलंद कर, आज तो बदला लेने का वक्त है, आज तो हड्डियां टूटने का और तलवारें चलने का वक्त है। रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, आज माफ कर देने का दिन है, आज बख्शिश का दिन है। वो रसूलुल्लाह जो इस तरह से
ان ظالموں کو معاف کر دیا حکومت آنے کے بعد, ہے نا, کہ جو 8 سال تک رسول اللہ

बिनते आहत नायला, अब तुम्हारे छुपने का वक्त है क्या? तुम्हें लगता है हुकूमत तुम्हारे जुर्म को भूल जाएगी? इस बार ना मुझे हया की फिक्र है और ना ही जवां मर्दी की। तोड़ डालो।

0: सरदार घर में कनीजों के अलावा और कोई नहीं है, वो सब गैर अरब हैं, वो जबान नहीं समझते।
1: जाओ तिजारत खाने की तलाशी लो, शायद घर वाले वहां छुपे हों।

0: साले तुम हो, यहां क्या कर रहे हो?
1: झूठा तो भुलक्कड़ होता है, मुझे लग नहीं रहा था कि तुम मुझे पहचान पाओगे। देखो इसे, गौर से देखो इसे, क्योंकि ये ईमान फरोश और बेदीन है। इसने पहले अपने बहनोई को फांसी तक पहुंचाया और अब इमाम की नौबत है।
0: तुम ये बातें ऐसे कर रहे हो जैसे तुम वहां नहीं थे।
1: इत्तेफाक से मैं था और मैंने इन्हीं आंखों से देखा कि जैसे ही हिलाल आजाद हुआ, अजम को फांसी पर चढ़ाया गया।
0: बासित की कहानी अलग है, उसके खून से मेरा कोई ताल्लुक नहीं।
1: अभी कुछ देर पहले मेरे कबीले के लोगों का खून बहाया गया है जो मुझे तुम्हारा कत्ल करने पर उकसा रहा है।
0: दुश्मन नकलिस्तान के पीछे लश्कर कशी कर रहा है और तुम अपना सारा जोर मुझ पर आजमा रहे हो।
1: तुम्हारा कत्ल मेरे दिल को ठंडक पहुंचाएगा। लानत हो तुम पर कि शिया की औलाद होकर इब्ने साद के लिए काम कर रहे हो।
0: मैं जबरन इब्ने साद के लश्कर के हाथों चढ़ गया हूं। खुदा की कसम, अगर तुम्हें मालूम होता कि तुम्हारे इमाम पर क्या गुजर रही है तो तुम इस वक्त वक्त बर्बाद ना करते। मेरा कत्ल करना चाहते हो तो जल्द से जल्द कर दो। मेरा काम तमाम करो और अपने इमाम की नुसरत के लिए दौड़ो। तलवार लेकर सिर्फ तकरीर नहीं करो।

0: मैंने पूछा कौन हो तुम?
1: सलाम, सिपाहियों की वजह से मजबूरन मैंने ये लिबास पहना है।
0: कहाँ जा रहे हो?
1: कूफे के अलावा जहाँ भी मुमकिन हो।
0: पहले तुमने अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से दफन किया और फिर एक बार भी उसके कब्र पर नहीं गए, और अब शहर छोड़कर जा रहे हो? कुछ अजीब नहीं लग रहा है?
2: खयानतकार की कब्र की ना ही ज़ियारत होती है और ना ही फातिहा पढ़ा जाता है।
0: अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए इतना ही बोझ होती तो उसके कब्र पर आंसू ना बहाते।
2: रहने दो सामिया बेटी, तुमने जो कहा मैंने वही किया।
0: नहीं, जो आंखें मैं देख रही हूँ ना ही उसमें गम है और ना ही खौफ। कुफा छोड़ने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा।
2: बेकार की बातें ना करो।
0: एक दलील, सिर्फ एक दलील दो कि तुम शमीम से नहीं मिले थे।
2: मैंने तुम्हारे लिए अपनी बेटी को खो दिया, इतना काफी नहीं है क्या?
0: इस वक्त शहर में हंगामा है। इब्ने ज़ियाद के लश्कर से लड़ने और चेहरे से नकाब उठ जाने के डर से भाग रहे हो?
2: मामला खराब ना करो और मुझे जाने दो।
0: जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता नहीं जाने दूंगी।
2: क्या कर रही हो तुम? अरे,
0: मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि तुम्हारा कोई दीनो ईमान नहीं है। इतना झूठ खुदा का खौफ करो। तुम्हें याद है फाजिल कि मैंने अपने शहीद शौहर बासित के खून की कसम खाई थी कि अगर तुम उसके कातिल का किसास नहीं लाए तो मैं इज्जत और आबरू भूल जाऊंगी।
3: अगर ज्यादा शोर शराबा करोगी तो तुम्हें भी वहीं पर भेज दूंगी जहां तुम्हारे शोहर को भेजा हुआ है, समझ गई ना तुम?
0: तुम जैसे पस्त कातिल से ताज्जुब की बात नहीं। ए लोगो, कहां हो? दौड़ो, मेरे शोहर का कातिल मिल गया है। शमीम, यही है वो।
2: क्या कर रही हो तुम? अगर तुम उसे कत्ल करना चाहती हो तो कत्ल कर दो, इतना शोर शराबा क्यों?
3: इससे पहले कि मैं सिपाहियों को आवाज दूं अपनी जबान को लगाम दो।
0: तुम क्यों जहमत करोगी? कहां हो?

0: साम्या, अगर तुम दीवानी हो चुकी हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नायला को अगर करबला जाने दिया तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा।
1: ये उसी से कहो, मेरी नजर में भी अगर नायला कूफे में रहे तो बेहतर है।
0: अगर नायला मेरी बात मानती तो इस वक्त वो तुम्हारी बहू ना होती।
2: अगर आप दोनों को अपने बच्चों की इतनी पड़ी है तो मुझे भी अपने बच्चे की फिक्र करने दीजिए, ताकि मेरा बच्चा भी अपने बाप का इंतजार ना करता रहे।
0: तुम उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो?
2: खुदा ने नायला के झूठ को सच साबित कर दिया।
3: दादीजान, दादीजान!
2: उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं?
0: यहाँ क्या कर रहे हो तुम मेरी जान? हाँ,
3: इब्ने हुरैस और उसके सिपाही जबरदस्ती घर में घुस गए हैं, और अब वो सभी यहाँ भी आने वाले होंगे।
0: यहाँ
2: हमें ढूंढ रहा है?
4: बिनते आहद, तुम छुप नहीं सकती, हर जगह ढूंढो उन्हें।
0: इस घर का मर्द मर गया है क्या जो इस तरह दरवाजा तोड़ कर आ रहे हो? तुम्हारी तहजीब कहाँ चली गई इब्ने हुरैस?
4: हमने बहुत ढूंढा, कोई बड़ा नजर ही नहीं आया। शायद मर गया हो और हम बेखबर हो मोहतरमा।
5: सरदार, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ सामान और घोड़े हैं यहाँ।
4: हम माँ को साथ ले चलेंगे, हो सकता है बेटी खुद ब खुद हाजिर हो जाए।
0: क्या करोगे तुम, बताओगे?

0: मेरा इस तरह गुफा छोड़ना मुश्किल है, जबकि मैं आया और उसके दोनों बच्चों से बेखबर हूँ, बहुत मुश्किल है।
1: हाँ आप सही कह रही हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है।
0: खुदाया मेरी मदद कर, चलते हैं।

0: साले, इससे ज्यादा अपने बाप को कब्र में अजियत ना पहुंचा। उस लश्कर के पास कसरत और हौसला है। वो जिस तरह खून और माले गरिमत के प्यासे हैं, वो किसी पर रहम नहीं करने वाले।
1: परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुदा की नुसरत उनके बंदों के लिए है।
0: कैसी नुसरत और कामयाबी! इमाम ही मोजेजे से अपनी जान बचा सकते हैं।
2: पिसरे साथ के लश्कर को शिकस्त देना इतना भी सख्त और नामुमकिन नहीं होना चाहिए। हम हमला करेंगे और बनी साथ के लोगों के साथ उनका काम तमाम कर देंगे।

0: तुम इस मखलिस्तान से बाहर नहीं निकले और नए नबा को दोबारा हासिल करने की सोच रहे हो। कितनी बार तुम लोग करबला के मुख्तलिफ रास्तों पर गए और उल्टे पैर वापस आ गए। मैं इब्ने हज्जाज के लश्कर से वापस आ रहा हूँ, सारे रास्ते बंद हैं।
1: इसने देखा कि इसकी जान तुम्हारे हाथों में है तो झूठ बोलने लगा। ये
0: खुदाया मुझे मौत दे दे, खुदाया मुझे मौत दे दे कि मेरा ईमान तन्हा है और ये लोग हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़े। तुम लोग मुझे कत्ल करके ये किस्सा

0: शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हारे दोस्तों तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचेगी। गला सूख रहा होगा, लो पानी पियो।
1: फुरात का रास्ता बंद कर दिया गया है, इमाम और उनके असहाब पर पानी बंद कर दिया गया है, और तुम मुझे पानी पेश कर रहे हो। ये कौन से दीन में है? मैं करबला से वापस आ रहा हूं, वहां बहुत बुरी हालत है। मुझ पर खुदा की लानत हो अगर मैंने पानी को हाथ भी लगाया, जबकि छोटे और शिरखार बच्चों पर भी पानी बंद कर दिया गया है। लानत है मुझ पर। चलो, मैं बेदीन और काफिर हूं। देर हो जाए इससे पहले कम से कम तुम ही कुछ।
2: मैं क्या करूं?
1: मसले का हल यहां नहीं, कूफे में है। इब्ने ज़ियाद इस जंग को भड़का रहा है,
0: तो
1: उसका काम तमाम कर दें, फिर पिसरे साथ की फौज खुद ही बिखर जाएगी।
2: ये दीवानगी है, पागलपन है। कूफा के दारुल हुकूमत में घुसना, वो भी जब आजकल कूफा में कोई मदद करने वाला नहीं बचा, ये हिमाकत है।
3: खामोश।
1: कूफा में बहुत कम सिपाही और मुहाफिज बचे हैं, सब करबला भेज दिए गए हैं। तुम्हारी तादाद भी उतनी नहीं कि उन पर हमला कर सको। तुम सब मारे जाओगे, लेकिन उस मलून के कत्ल से पासा पलट जाएगा। फिर उसके तख्ते हुकूमत को उसके लिए कब्रिस्तान बना देंगे। अगर तुम सब अपने इमाम की मदद के लिए आए हो तो कुछ करो, कहीं देर ना हो जाए। अगर देर हो गई तो महशर में हमसे ज्यादा कोई और शर्मिंदा नहीं होगा।

0: तुम्हारी मां के एहतराम की वजह से खोल रहा हूं। वो मीसम का जनाजा उतारने के लिए पूरी बहादुरी के साथ मैदान में हाजिर हो गई थी।
1: उठो।
2: तमाम काफिले और मुसाफिरीन गौर से सुने, अब भी वही हुक्म है जो पहले कहा गया था, कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं जाएगा जब तक ये माजरा खत्म नहीं हो जाता। हौसला रखें, अगर ज्यादा जिद करोगे तो
3: इस दरवाजे से निकलना नामुमकिन है।
2: अब घर लौट जाओ।
3: काश सुई की नोक के बराबर मुझे अपने बाप से कुछ उम्मीद होती। पैसा दिया और निकल गई।
2: जंगी जवान हरकत करें।
3: क्या हुआ? नायला इन औरतों को देखो।

0: पैसा दिया और निकल गई।
1: आप उन्हें चाहे जितना भी पैसा दे दें, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, गुफा में तलाश कर रहा है, चलिए चलते हैं।
2: यहाँ खड़े क्यों हो? आज इस दरवाजे से निकलना नामुमकिन है, लौट जाओ।
1: चलो।

0: तुम यहाँ से जाओ और फिर वापस ना आना, जैसे अबू शमीम की कोई बेटी थी ही नहीं।
1: अकेली मैं कहाँ जाऊँ?
0: हर सरजमी को कातिल और मुजरिम की जरूरत पड़ती है। जहाँ तुम्हारी मर्जी हो जाओ।
1: आप कहाँ जा रहे हैं? ना कूफा में ठहर रहे हैं और ना ही मेरे साथ जा रहे हैं। बताइए कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे फिक्र है आपकी।
0: अगर मुझमें गैरत और आबरू होती तो मैं करबला जाता, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। मैं डर रहा हूँ कि कहीं रोने के लिए भी कोई और जगह ना मिल पाए। मैं बयाबानों में जाकर दुआ करूंगा, शायद खुदा मेरी दुआ सुन ले और ये किस्सा बखूबी तमाम हो जाए।

0: रास्ते से हटो।
1: रुक जाओ, कहां जा रहे हो?
0: जनाब हजाज की तरफ से इब्ने ज़ियाद के लिए एक असीर और लाया हूं।
1: तुम हिलाल बिन हनीफ हो?
0: बड़ी देर से पहचाना।
1: तुम्हारा नाम दुश्मनों और जंगी फरारियों में है। मुझे हुक्म मिला है तुम्हें अमान न दूं।
0: अगर मैं दुश्मन या काफिर होता तो कूफे में क्यों आता?
1: असीर को जिंदान में डाल देते हैं या फिर जनाब अम्र के हवाले कर देते हैं। तुमने आखिर कैसा असीर गिरफ्तार किया है जिसे सीधा यहाँ लेकर आए हो?
0: देखो इस शख्स को, इसी ने मीसम का जनाजा चुराया था, वही जिसे तुम और तुम्हारे सिपाही गिरफ्तार ना कर सके। अगर तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया हो तो वक्त बर्बाद ना करो।
1: रुक जाओ, तुम्हें कूफा में आने का हुक्म कब मिला?
0: कल रात।
1: यानी तुम चाहते हो मैं यकीन कर लूं कि बिन हिजाज को उबैदुल्ला के नखीला पहुंचने की खबर नहीं थी? या तो तुम यहाँ किसी मकसद के लिए आए हो ए फरार कमांडर? दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद करो।
2: वो हिलाल है ना?
3: हिलाल!
0: रुको नहीं, जाओ यहां से बाहर, जाओ
4: हिलाल,
0: सब लोग जाओ, यहां ना रुको। चलो जल्दी निकलो, बाहर निकलो, जाओ।
5: एहतियात से नायला, थोड़ा आराम कर लो, आराम से, आराम से।
2: मैंने कहा था ना कि वो वापस आएगा, लेकिन अगर उसे कूफा में गिरफ्तार कर लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
5: खौफ और हिरास को दिल में जगह ना दो। तुमने नहीं देखा उसने दरवाजे के सामने कैसे तलवार खींच ली और सिपाहियों को कत्ल कर रहा था?
6: घर नहीं है क्या?
5: मेरी बहू हामला है, थोड़ा आराम कर लें तो हम चले जाएंगे।
6: या अल्लाह, यहां मत रुकिए, जाइए यहां से।
5: उठो, नजदीक है, इससे पहले जब कूफा कूफा था और यहाँ हबीब मीसम और हानी थे तो यहाँ शियों का इज्तिमा रहता था।
7: आखिर इमाम के बच्चों पर पानी क्यों बंद कर दिया गया? किस दीन मजहब में बच्चों पर पानी बंद किया जाता है?
2: अगर हम यहां रुके तो हमारा काम तमाम है।
5: तो कहां जाए, कहां जाए?
2: मैं एक ऐसा घर जानती हूँ जिसमें एक अरसे से कोई नहीं है। चलो वहीं चलते हैं।
6: हाँ, चलो, चलो, चलो,
5: हाँ चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो।

0: तशरीफ लाए, खुश आमदीद। घर में कोई नहीं है, तशरीफ लाए।
1: माजिद तुम आ गए, क्यों इतनी देर कर दी?

0: तिजारत की क्या खबर है? माजिद सुनो, मैं अपनी आस्तीन में सांप पाल रहा था। ये काफिर और बेदीन चोर मेरे घर में क्या कर रहे हैं? निकल जाओ यहां से।
1: मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से।
0: ठीक है, अगर नहीं जा रहे तो हम सिपाहियों को बुलाते हैं।
1: सिपाहियों,
2: इसका कत्ल मुबाह और बाबरकत है। मैं एक मुद्दत से माविया के इस कातिल को कत्ल कर देना चाहता था।
3: मेरे भाई आराम से, हम जंग के लिए थोड़ी आए हैं। ये जो कोई भी है और इसने जो भी किया, लेकिन ये इसका घर है।
2: ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने तो इन लोगों का जुल्म अपनी आँखों से देखा है।
4: इस जैसे नजीस लोगों ने तो हमारी दुनिया को भी लूटा है और ऐसे ही लोगों ने हमारे दीन को भी बर्बाद किया है।
3: शर्म करो, वही होगा जो मैंने कहा। जब तक हम लोग इस घर में हैं, ये मर्द मेरी पनाह में है। उठाओ इसे। यहां से ले जाओ इसे, मेरी नजरों के सामने से हटाओ। ले जाओ।
1: छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। नायला!

0: जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, एक दूसरे का ख्याल रखें और यहीं रुकें।
1: लेकिन उसके बाद क्या? हम यहाँ कब तक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे?
0: अगर तुम्हारे जहन में कुछ हो तो बताओ। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि शहर में शियाने अली का आना जाना मना है? ना कहीं जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना नमाज और ना बाजार।
2: इन्हीं सब की वजह से हम लोग खाना नशीन हो गए हैं, वरना हम इस वक्त अपने इमाम के साथ होते।
3: इमाम ने हमारी फिक्र नहीं की और ये जंग मोल लेकर इतने शियों को खुद से महरूम कर दिया।
4: करबला के लिए अहलियत होनी चाहिए जो हमारे अंदर नहीं थी। जनाबे हबीब उसी दरवाजे से करबला गए।
0: बकौल मीसम, अगर वो इमाम हैं तो हमसे बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन हम जैसे लोग बड़े बनकर उन्हें सिखाने लगते हैं।

0: तुम यहीं रुको, मुझे इत्मीनान रहेगा। मैं आहिया की खैरियत देखकर आ रही हूं, परेशान ना हो, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। रुकना जायज नहीं है, तुम अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह मैं जल्द वापस आ जाऊंगी।
1: नहीं, नहीं, बेहतर है कि आपके पास रहे।

0: कोई फायदा नहीं, सात लोग इतने ज्यादा लोग से नहीं लड़ पाएंगे, ये नामुमकिन है।
1: मैंने ऐसे ही अपनी जान हजार बार

0: खतरे में नहीं डाली है।
1: दुश्मन पर हमला करना खुदकुशी है।
0: दुआ करो कि कहीं देर न हो गई हो। 3 दिन से फुरात पर कब्जा है।
1: 3 दिन हो या 10 दिन, अगर हम इससे पहले भी पहुंच जाते तब भी कोई फायदा नहीं होता। हमारा बच के निकलना नामुमकिन है।
0: हम जिंदा बचने के लिए नहीं आए, इमाम की जान अहम है।
1: हमारी जाने इमाम पर कुर्बान, लेकिन मेरे साथ यतीम बच्चे भी हैं।
2: वो ना हम पर रहम करेंगे और ना ही हमारे बाद हमारे नामूस पर रहम करेंगे।
3: तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है तो बताओ।
0: रात होने तक सब्र करना होगा। दुश्मन से भी गलती होने की गुंजाइश है, पर रात में भाग जाना भी आसान है। मंसूबा वही है जो पहले था। तुम असीर हो और हम गुलाम पहुंचने वाले।
1: तुम्हारा मंसूबा अगर अच्छा और मजबूत होता तो हम लोग दरवाजे पर फंसते नहीं।
2: तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो जनाब? कूफा के मुहाफिज ने तो हमारा सारा झूठ पकड़ लिया। हम इब्ने ज़ियाद के लश्कर के बिल्कुल करीब हैं और हमारा काम तो तमाम है।
3: मंसूबा वही है जो हिलाल ने बताया। हम इसलिए नहीं आए कि जिंदा वापस जाए। इब्ने ज़ियाद को कत्ल करने के लिए जान भी देनी पड़े तो हाजिर हूं।
2: मैं अब रुक नहीं सकता। उधर जंग छिड़ी है और तुम लोग जान बचाने की बात कर रहे हो।
1: मेरी भी समझ से बाहर है। अगर कोई अच्छा मंसूबा होता तो मैं रुक जाता, लेकिन इस हालत में इमाम की मदद की कोई उम्मीद नहीं। खुदा हाफिज़।

0: आपने सुना नहीं, यहां आने जाने पर पाबंदी है, आप जाइए यहां से, जाइए यहां से। क्या नाम है आपका,
1: किस कबीले से हैं आप,
0: आपका घर वर है या फिर गलियों में ही रहती है आप, कुछ बोलती क्यों नहीं, बेजुबान है आप, कहां, बगैर जरूरत के आने जाने पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, आप समझती क्यों नहीं।
2: काश के अपनी जान के डर से ही खड़ी रहती और कुछ नहीं करती, अपने बाप की जान का तमाशा देख रही थी ना, सामिया सही कह रही थी, बेटा नहीं दिया, मेरी बेटी को भी मुझसे ले लिया, इश्क ने तुम्हारी आंख और अकल दोनों अंधे कर दिए हैं, लानत हो तुम्हारे बाप की कब्र पर हिलाल, लानत हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे अलग हो,

0: तुम्हारा गोश्त और हड्डी मेरे खून से है, तो मेरी तरह बल्कि हो बहु मुझ जैसी हो।
1: तुम्हें और तुम्हारी तरह के हर शख्स को देखकर मुझे घिन आती है, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हूं। जब भी मैंने आतिफ और अलवान की आंखों में देखा तो मुझे शर्म आई कि मेरा तुम जैसा बाप है। बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया आपने।
0: मैं तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए जमीन पर जन्नत बनाना चाहता था।
1: जन्नत? मैं जहन्नुम में जा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बनाई हुई जन्नत में नहीं।
2: अंदर ढूंढो, ढूंढो।
0: आ गए अम्र, किसी फरिश्ते की तरह आसमान से जमीन पर आ गए। आओ और मेरे हाथ खोल दो। इन काफिरों ने मुझ पर और नैला पर कोई रहम नहीं किया। आओ, अगर देर में आते तो मेरा खून बहा दिया गया होता। आ जाओ।
2: कहाँ है?
0: कौन कहाँ है?
2: मैंने पूछा वो कहाँ है।
0: कौन कहाँ है?
1: भाग गई।
0: कोई यहाँ था ही नहीं के भागता।
2: जिस दिन तुम सामिया को असीर करके ले गई, उस दिन मुझे याद नहीं था कि औहद की बेटी

0: नाहिला, अम्र, अम्र सुनो, अम्र, हम दोनों को एक दूसरे से काम पड़ता रहता है। आज तुम चलाकी करोगे और कल मैं एक खत के जरिए तुम्हारे पूरे कबीले को बर्बाद कर सकता हूँ। मेरी बेटी को गिरफ्तार ना करो।
1: तुम्हारा दामाद जंग से भाग गया और तुम्हारी बेटी शिवों से मिल गई है। तुम्हारा खानदान बर्बाद हो गया है औहद, लेकिन तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से तुम्हारी इस ख्वाहिश को हम रद्द नहीं करेंगे। तुम्हारी बीवी को आजाद कर रहा हूँ। तुम्हारी बीवी मेरी तरफ से तोहफा है।
0: और मेरी बेटी?
1: लेकिन तुम्हारी बेटी फिलहाल अम्र के पास रहेगी।
0: अम्र, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें मैं।
1: ले जाओ इसे।
0: नाहिला, मेरी बेटी।
2: सब्र करें, सब्र करें।

0: हमारी पनागा और सुकून होना था, लेकिन मैं मुसीबत बन गया।
1: अगर माफ करने की बात है हिलाल, तो मुझे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं।

0: दो चांद एक जिंदगी से ज्यादा अहम है।
1: अगर दुनिया ने उसे मोहलत दी, उसने जिंदगी का मुंह देखा, तो खुदा करे वो तुम्हारे जैसा हो।
0: तुम रो क्यों रही हो? अब तो हम साथ हैं।
1: मेरे दिल पर एक ऐसा जख्म लगा है जो मुझे नहीं मालूम कहां से आया। मेरे आंसू मेरे इख्तियार में नहीं है।
0: ये ना देखो कि मैं एक जंगजू हूं। मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता।
1: एक सवाल पूछ सकती हूँ? जिस दिन नायला से शादी के लिए तुमने हामी भरी, जिम्मेदारी की वजह से था या दिल से?
2: मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
1: ए भाई, करबला की कोई खबर है?
2: नहीं मालूम। मैं खबर हूँ कि उन्हें पानी दिया या प्यासा ही उन्हें कत्ल कर दिया। उनके बच्चे प्यासे ही थे। अल्लाह जाने क्या हुआ।
0: तुम भी करबला के लिए बेचैन हो? नायला,
1: नायला की जान,
0: मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे ये कभी नहीं बताया कि मैं अपने मौला अली के बाद तुम्ही से इश्क करता हूं। ये फिरोजे का पत्थर बलाएं दूर करता है। आपके पास रहे तो अच्छा है।

0: लैला मेरी बेटी।
1: किनारे हो जाओ, किनारे हो जाओ, रास्ता खोलो, रास्ता खोलो।
2: इस्लामी फौज पर यजीद बिन माविया के मुखालिफों और दुश्मनों पर कामयाबी और कामरानी मुबारक हो। हम खुशी से बागी दुश्मनों की गर्दन उड़ाकर ही सुकून लेंगे, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन ऐसा भी हो जब ये गिरोह बिल्कुल मिट चुका।
3: लानत हो तुम पर, लानत हो तुम पर।

0: तुम्हारी जगह होता तो अपनी बहू के बगल में उसकी भी कब्र बनाता।
1: मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, नहीं कुछ करो।
0: तुम्हें याद है मेरी आंखों के सामने से दूर हट जाओ।
1: नहीं खुदा रहो। खुदाया रहम कर।
2: अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।

0: बीमारी है,
1: हाँ, तो क्यों ना इन आयतों को मैं लिखकर सुनाऊं ताकि सवाब तो सवाब भी मिले और लोगों को पता भी चले कि खुदा बंदे आलम क्या कह रहा है। सूरह रूम के अंदर 5 से 6 ऐसी आयतें हैं जिसकी इब्तिदा हो रही है वमिन आयाती है वमिन आयाती है वमिन आयाती है, और अल्लाह की निशानियों में से अल्लाह की निशानियों में से अल्लाह की निशानियों में से। तो पहली आयत में खुदावंद आलम ये कहते हैं, वो कह रहा है कि वमिन आयाती ही अन खलककुम मिन तुराबिन थुम्मा इदा अंतुम बशरुन तंतशुरून, और उसकी निशानियों में से उसकी आयतों में से एक ये है कि उसने तुम्हें मिट्टी से खल्क किया, उसने तुम्हें खाक से मिट्टी से पैदा किया, और जब तुम इंसान बने तो रूए जमीन पर फैल गए। मिस्कीन इब्न आदम, कितना कमजोर है ये इंसान जो मिट्टी का पुतला है। देखिए अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत। खुदा कह रहा है उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से कल किया और जब तुम इंसान बने तो रूए जमीन पर फैल गए। और फिर उसके बाद कह रहा है वमिन आयाती अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन वरहमा इन फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून। और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे ही जिन्स में से तुम्हारे लिए अज़वाज को पैदा किया, स्पाउसेस और मेट्स को पैदा किया, ताकि तुम उनके पास तस्कीन हासिल कर सको, सुकून हासिल कर सको। और उसने तुम्हारे दरमियान में मवद्दत और रहमत रख दी। और फिर खुदा दावत फिक्र दे रहा है, कह रहा है इन फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए कि जो गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं। और फिर उसके बाद वाली आयत में खुदावंद आलम कह रहा है वमिन आयाती खल्क السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين। और अल्लाह की निशानियों में से यह है कि उसने आसमान और जमीन को पैदा किया, खल्क किया, और तुम्हें मुख्तलिफ जुबानों और रंगों में खल्क किया, मुख्तलिफ जुबानों में और रंगों में। और इसके अंदर खुदा कहता है निशानियां हैं, आयात है। किन के लिए? उन लोगों के लिए कि जो सुनते हैं, हाँ, जो सुनते हैं उन लोगों के लिए निशानियां हैं। वमिन आयातिही मनामुकुम बिललैल वन्नहार वब्तिगाउकुम मिन फज़लिही इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। और उसकी निशानियों में से, हाँ, तुम्हारी नींद है, रात और दिन की नींद जो सोते हैं, हाँ, ये नींद जो सोते हैं रात और दिन को, ये नींद जो है ये एक किस्म की मौत है। कुरान के अंदर इसका जिक्र आया है, इंसान जब रात को सोता है, हाँ, तो अल्लाह के कब्जे में उसकी उसकी रूह चली जाती है। और सुबह के वक्त होता क्या है कि अगर ऐसे शख्स का वक्त आ चुका है तो उस रूह को खुदा रिटेन कर लेता है, वरना अपने फरिश्तों के साथ भेजता है। व मिन आयाति खुदा वंदे आल मनामुकुम बिललैल वन नहार, तुम्हारी नींद है रात और दिन की। वब्तिगाउकुम मिन फज़ल, और उसके फजल को तलब करने। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए कि जो सुनते हैं। व मिन आयाति युरीकुमुल बर्क़ा खौफन व तमअन وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ। اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے, بجلی یعنی کہ تھنڈر اینڈ لائٹنگ, جو دو چیزوں کا باعث ہے, ہاں, خوف اور امید۔ ظاہر ہے کہ کبھی کبھی لوگ جو ہیں थंडर एंड लाइटनिंग से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, आवाज सुन के घबरा जाते हैं, होता ये नहीं है, कहा है खौफ है। वह तमान, और उम्मीद भी है, उम्मीद का है कि बारिश की उम्मीद, और आसमान से वो बारिश बरसाता है, पानी बरसाता है जिसके जरिए से मुर्दा जमीन को जिंदा करके आबाद कर देता है। इसमें खुदा कहता है कि निशानियां हैं उन लोगों के लिए कि जो अक्ल और फहम रखते हैं। और फिर आखिर में कहता है कि वमिन आयाती ही अंतकूम समाउ वल अर्ज बे अमरही, और उसकी निशानियों में से यह है कि वो आसमान और जमीन उसके हुक्म में, उसके हुक्म से कायम है।

और फिर होगा क्या, सुम्मा इज़ा दआकुम दअवतन मिन अल अर्ض इज़ा अंतुम तखरुजून। एक वक्त वो जरूर आएगा कि जब आवाज आएगी, एक पुकार तुम सुनोगे, तो तुम जमीन से बाहर निकल के अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाओगे। ये तमाम चीजें मेरे दोस्तों अल्लाह की निशानियां हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया है। खिलकत खुदा, खुदा बंदे आलम ने जो चीजें पैदा की है, दावत फिक्र है, इस पर गौर करो, इस पर फिक्र करो। क्यों करें? ताकि अल्लाह के एग्जिस्टेंस और वजूद का तुम्हें अंदाजा हो जाए। अल्लाह डज एग्जिस्ट, वो है, वह खालिक कुल शय, और वह हर शय का खालिक है। अब देखिए, जहां तक वजूद इलाही का मसला है कि अल्लाह एग्जिस्ट, खुदा बंदे आलम ने खुदायाबी, खुदा जोई जो हम कहते हैं, इंसान की फितरत में रख दी है। खुदायाबी जो है, फितरत अल्लाह लती फतर अन्नासा अलैहा, अल्लाह ने इंसान की फितरत में मारिफत व शनाख का जज्बा रख दिया है। यानी इस दुनिया के अंदर अगर कोई कहे कि आई डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो अपनी जुबान से तो कह रहा है, हा? लेकिन अपने अंदर, अपने दिल की गहराई में वो ये जानता है, वो ये मानता है कि देयर हैज टू बी अ सुप्रीम पावर। मैं अभी अभी दो हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं। मेरी आदत है कि मैं इंडिपेंडेंट जो पेपर है ऑनलाइन पढ़ता हूं सुबह सवेरे, और उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें हमें मिल जाती है। तो दो हफ्ते पहले इस आर्टिकल को मैंने देखा, एथिज्म के बारे में, ये उन लोगों के बारे में जो कहते हैं गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, और उसमें रिसर्च ये किया गया है, ये बताया गया है कि आज के दौर में एथिस्ट से अगर आप पूछ लें कि तुम खालिक के वजूद में मानते हो कि कोई खालिक है, कोई खुदा है, तो जवाब में वो ये कहते हैं कि वी डू नॉट बिलीव इन गॉड, बट वी डू बिलीव इन सम काइंड ऑफ सुप्रीम पावर। अल्फाजों का खेल है या नहीं? ये एथिस्ट हैं, पहले कह रहे थे खुदा नहीं है, लेकिन खुदा नहीं, मेरे और आपकी फितरत में रख दिया है। मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, काफर हो, मुशरिक हो, दिल के अंदर सूरह अनकबूत की जो हम तिलावत करते हैं शब कदर की रात को, वले इन सअलतहुम मन खलक السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله। ए मेरे हबीब, अगर तुम इनसे पूछ लो जो कहते हैं खुदा में नहीं मानते, रिजेक्ट करते हैं, कि किसने जमीन और आसमान को खल्क किया, वसखर الشمس والقمر, और शम्स और कमर की तस्खीर की, तो ये बेसाख्ता बे इख्तियार कहेंगे अल्लाह ने। अन्ना यू फकून, तो फिर ये क्यों बहक चुके हैं, क्यों बहक गए हैं? वला इन सअलतहुम मन नज़ल मिन अस्समाई माअन फअहया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा लयकूलुन अल्लाह। अगर तुम इनसे सवाल करोगे आसमान से बारिश किसने बरसाया और पानी के जरिए से मुर्दा जमीन को किसने फिर से आबाद किया, तो ये बेसाख्ता कहेंगे अपने जुबान से अल्लाह। قل الحمد لله, खुदा कह रहा, अब तुम कहो, सारी तारीफ खुदा की है। तो खुदा या भी जो है, खुदा जो ही है, जो कोई कहे कि खुदा में नहीं मानता, आई डोंट बिलीव इन हिज एग्जिस्टेंस, ये खुद जो है बेवकूफ है और दूसरों को बेवकूफ बनाना चाहता है। क्योंकि फितरत अल्लाह लती फतर الناس अलैहा, खुदा ने यह कहा। बस यही बात समझाने के लिए हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफर इब्न मोहम्मद अस-सादिक सलावातुल्लाहि व सलामुहु अलैह, ये खिदमत में एक शख्स आया और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी वजूद खुदा के बारे में सवाल किया। तो इमाम जानते थे कि ये वो शख्स है कि जो अक्सर कश्ती में सफर करता है। उस जमाने में लोग सफर करते थे ऊँटों पर, हाँ, गोरों पर, या फिर कश्तियों में। कहा ये मुसाफिर है, रेगुलर ट्रेवल है, कश्ती में सवार होता है। इमाम ने सवार

जिम्मेदारी चंद कदम आगे की है। हम जाहिर हम पहली क्लास के इमाम हुसैन की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं। जो पहली क्लास का स्टूडेंट है उसके लिए एक अच्छा इमाम हुसैन रसूल के नवासे थे, अच्छा पता नहीं था, अच्छा करबला में ये हुआ, अच्छा पता नहीं था, वो भी ये पहली क्लास का स्टूडेंट है। अच्छा शिया जो है वो खून वून नहीं मिलाते, ये पहली क्लास का स्टूडेंट है, मातम ये होता है, ये पहली क्लास, हम पहली क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं। हम उस फाइनल क्लास में पहुँचे हुए हैं कि जिसके बाद हमें खैमा इमाम हुसैन में दावत दी जाएगी, यानी हम वाकई अपने आप को उस काबिल उस मकाम तक लेकर आए कि जहाँ के बाद जब हमें मिले तो बोला आओ तुम भी इमाम के खैमे में आ जाओ। और वो जो पर्दा गैबत में इंतज़ार कर रहा है वो उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कब तक हमारे मानने वाले पहली क्लास में रहेंगे। उनको अपग्रेड होना चाहिए, उनको आगे निकलना चाहिए, इन्हें माशरे की साख के लिए कुछ करना चाहिए, मेरे लिए सोसाइटी को डेवलप करना चाहिए। तो हम हमारा इन मजालिस से जाने मोहतरम मजालिस अहद हैं, उस अहद का जो परवरदिगार ने कुरान में कुछ लोगों ने जो जब करबला में भी कोई शख्स गिरता था तो सैयद शहदा उसके पास जाते थे और जो एक आयत की सबसे ज़्यादा तिलावत फरमाते थे वो क्या था, मिनल मोमिनीना रजालुन, कि लोगों में से मर्द कुछ लोग ऐसे हैं क्या कर रहे हैं जो अपने अहद जो वादा किया था उसको निभा चुके हैं, उसको निभा लिया है और कुछ उस वादे का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो जो इमाम के साथ थे उन्होंने वादा निभा दिया और जो उस रास्ते पर जाते जा रहे हैं उस वादे को निभाते जा रहे हैं। हम बाकी हैं, हम अभी उस वादे को निभाने के रास्ते पर हैं, जब तक निभाएंगे नहीं तब तक उसी रास्ते पर जा रहे हैं। तो हम ये देखें कि खुदावंद मुताल ने अहद लिया है और अहद लेकर हुए ज़मीन पर इंसान को भेजा है, वादा किया है इंसान से, अलस्तो कहा है लोगों ने आलम जर के अंदर, रूहों ने खुदा को इकरार किया है जिसने जितनी जल्दी और जितना मजबूत इकरार किया खुदा ने ज़मीन पर उसको उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी अदा की। अल्लाह के वली अल्लाह के नबी आइम्मा वो है कि जिन्होंने खुदा के उस बात को सबसे पहले कबूल किया, और जब आप विलायत इलाही को कबूल करते हैं तो फिर आजमाइश भी उतनी ही बढ़ जाती है। जो चीज़ इस टाइम रिक्वायर्ड है जाने मोहतरम, क्योंकि हमारी गुफ्तगू यही है कि हम इस करबला से हम ज़हूर तक पहुँचें, यही हमारी गुफ्तगू है, माशरा साजी है, मारिफत शनासी है, करबला की पहचान है, बसीरत है, दुश्मन शनासी है, ये सारे मौजू इसी के पैराहे के अंदर हैं जो आपकी खिदमत में बयान करने की कोशिश की जा रही है। वो जो आखिरी ज़माना है वहाँ फितने भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फितने हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम इरशाद फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने में फितने ऐसे होंगे, फितनों में इंसान ऐसे चेक किया जाएगा जैसे कोई चीज़ उलट पुलट की जाती है, या छाननी जिसमें आप डालते हैं बारह पानी डालें कोई भी चीज़ डालें, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले जैसे छाननी आप छानते हैं तो जो खालिस होता है वो रुक जाता है और जो खालिस नहीं है वो गिर जाता है। इमाम फरमाते हैं आखिरी ज़माने मोमिन फितनों में छाना जाएगा, जो खालिस होगा वो रुक जाए और जो ना खालिस होगा वो गिर जाए। ये दौर वही है, फितने का दौर है, आपके सामने मुश्किलात, फितना इज्तिमाई, फितना

तबीयत खराब हुई, गिर गए, कंबल उम्बल आगे डाला, देखा टेम्परेचर शदीद हो गया, बुखार शदीद हो गया और वक्त एहजार आ गया। ऐसा लगा कि बस अब देखा कि आसमान हटा और मलकल मौत नीचे। एकदम उन्हें अपना ख्वाब याद आया कि मैंने ख्वाब देखा था। उसी वक्त इमाम हुसैन से तवस्सुल किया, कहा मौला मौत बरहक है लेकिन मेरे हाथ खाली है, मेरे पास कयामत के लिए कुछ नहीं है, मुझे एक मोहलत दे। बस ये तवस्सुल करना था। कहते कोई शख्स आया और उसने मलकुल मौत को कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि जाओ इसको अभी छोड़ दिया, इसको मोहलत दे दी गई है। यानी अगर इंसान वाकई चाहे तो हुसैन उसे मोहलत भी दिलवा सकता है। तो ये हमारे अपने ऊपर है कि हमारा रब्ता। और फिर आप देखें अब्दुल करीम हायरी ने क्या काम किया, अंदाजा नहीं आप औजा इलमिया कुम। बहरहाल हम भी वहीं के शागिर्द हैं, हम तो हमारी तो कुछ हैसियत ही नहीं है। बड़ी बड़ी शख्सियात आप देखें ना कहाँ से हैं, रूहुल्लाह खुमैनी, अल्लामा तबातबाई, शहीद मुदहरी, क्या अज़ाने मोटर, कितनी मोहलत थी हुसैन जिसे ज़िंदगी दे दे, फिर कौन उसकी ज़िंदगी ले सकता है। तो ये बात हल काम करना ज़रूरी है। हम अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में लेके एक अहद खुदा ने हमसे और दूसरा अहद भी खुदा ने लिया है कि शैतान की पैरवी नहीं करनी, ताहूत की पैरवी नहीं करनी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में आकर कयामत तक बता रहे हैं कि दो ही रास्ते हैं, या हक है या फिर बातिल है, तुम्हारी मर्जी। इंसान अपना सौदा करे। जो इमाम के मुकाबले में आए थे वो दुनिया परस्त थे, दुनिया चाहते थे, नमाज तो उधर भी थी, कुरान तो उधर भी था, लेकिन वहाँ इमाम नहीं था। इमाम को दुनिया के बदले में बेच दिया। तो कहीं हमारे दिलों में भी तो दुनिया वैसी नहीं, हमारे दिलों के अंदर दुनिया कैसी है? ये खुद देखें, कोई भी आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं दोबारा आइए हदीस में देखें कि जिस दुनिया के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जिस दुनिया के लिए हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, दुनिया की हकीकत क्या है? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम इरशाद फरमाया कि जिस दुनिया के पीछे तुम भाग रहे हो, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन खाने की चीज क्या है? सबसे बेहतरीन शहद। और शहद क्या है? मक्खी। शहद की मक्खी का क्या है? लाभ है ना, मुंह से निकाल फूलों को लाता है, चूसता है, डालता है। सबसे बेहतरीन खाने की चीज मक्खी के मुंह से निकला हुआ लाभ है। दूसरी चीज इमाम कहते हैं सबसे बेहतरीन चीज दुनिया की पीने के लिए क्या है? पानी। कहा वो पानी नेक आदमी के लिए भी वैसे ही जैसा वो बुरे आदमी के लिए। इस पानी के पीछे भाग रहे हो, बुरा भी वही पी रहा है, अच्छा भी वही पी रहा है। तीसरी चीज कहा सबसे बेहतरीन लिबास इस दुनिया में क्या है? रेशम, सिल्क, कीड़े के मुंह से निकला हुआ धागा, ये दुनिया की कीमत। सिल्क सबसे बेहतरीन सवारी, मौला क्या कहते हैं? घोड़ा सबसे बेहतरीन सवारी। ज़ाहिर है अभी तो आप बोलेंगे मौलाना साहब हमारे पास, ज़ाहिर उस जमाने के हिसाब से, लेकिन घोड़ा आज भी बहुत कीमती है और नस्ली घोड़ा हो तो बहुत ही कीमती है। अभी भी घोड़ा ये ऐसी नहीं है। और आप ये देखें, बहरहाल आप मुझसे बेहतर जानते हैं, अभी भी गाड़ियाँ जो बिकती हैं वो हॉर्स पावर के साथ ही बिकती हैं। हॉर्स पावर होता है ना, इस गाड़ी में कितना हॉर्स पावर है। तो इमाम अली ने ऐसे नहीं कहा घोड़ा सबसे बेहतरीन सवारी है, सबसे बेहतरीन सवारी घोड़ा, और इसी पर सवार होकर लोगों का कत्ल किया जाता है। इमाम फरमाते ये दुनिया बेहतरीन लज्जत शहवत की क्या है, इमाम ने उसको भी डिफाइन किया। वो हर चीज़ एजाने मोहतरम दुनिया की बेहतरीन चीज़ क्या है? ये
اس دنیا کے پیچھے بھاگو. اے باپ دنیا تمہیں کیا دے گی؟

अगर दुनिया में कोई चीज लज्जत है, बेहतरीन है, तो वो खुदा की इबादत है। ऐजाने मोहतरम, कयामत में, बहिश्त में आपको सब मिलेगा, सब मिलेगा। इंसान जो चाहता है उससे भी ज्यादा मिलेगा। क्या चीज घर वाला मिलेगी, क्या चीज कयामत में आपको नहीं मिलेगी। आयतुल्लाह शमसुद्दीन ही बयान करते हैं, एक आलमदीन को ख्वाब में देखा कि एक मजलिस हो रही है, मजलिस हो रही है, देखा दरवाजे पर खड़े हुए दरवाजे, और उन्होंने कहा कि इनका तो इंतकाल हो गया, ये क्यों आए? तो कहा आप क्यों आए, और नेक आदमी थे, नेक आदमी, कहा आप क्यों आए? कहा ये जो मजलिस में लोग गिरिया करेंगे ना, मैं उनके आंसुओं को जमा कर दे रहा। कहा क्यों? कहा उस आलम में सब कुछ है, आंसू नहीं है। कहा सब कुछ है, कुरान देखिए, जो आप यहां करेंगे वहां उसका रिजल्ट है। अब जो वहां आदमी जाना चाहता है वो यहां तो नहीं मिलेगी, वहां तो नतीजा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब निकाल दिया गया तो अपनी वालदा के साथ, वो कहते हैं शहर से बाहर निकले, रास्ते में रोजे की हालत थी, कुछ खाने को नहीं था, घास फूस खाई, लेकिन उनकी वालदा का इंतकाल, जनाब मरियम का इंतकाल हो गया। बहरहाल वो हजरत ईसा थे, जिंदा भी करते थे, पूछते थे। उन्होंने अपनी माँ के बदन से सवाल पूछा कि अगर आप दोबारा जिंदा हो तो क्या करेगी, क्या करेगी, क्या आप दुनिया में आना चाहेंगी? कहा मैं दुनिया में आना चाहूंगी। कहा क्यों? कहा मैं चाहूंगी कि गर्म दिनों में रोजे रखूं और सर्द रातों में इबादत करूं। उस आलम में ये नहीं है, नहीं। उस आलम में नतीजा है, नतीजा है, नहीं बोलो, यही आलम है, यही कुछ है जो आपके पास फुर्सत है। आप जवान है माशाल्लाह, ये जवानी, ये वक्त फिर नहीं आएगा। दुनिया आपको एंगेज कर रही है, दुनिया आपका वक्त ले रही है, सारी चीजों को फॉलो नहीं किया जाता, हर चीज को देखा नहीं जाता, अपने जहन को दुनियावी चीजों से आलूदा होने से बचाएं। इमाम हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप कभी भी कोई काम किया, अगर मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जाने मोहतरम, बहरहाल मैं आपसे बेहतर नहीं हूँ, आप मुझसे बहुत बेहतर है, लेकिन मैं हमेशा जिंदगी में बहुत सारे कामों में इंसान फंसता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मतलब होता है इंसान जिंदगी में। हमेशा मैं अपने आप को इमाम ज़माना से मुतसिल करता हूँ, मैं कहता हूँ मौला अगर ये काम मुझे आपके करीब कर रहा है तो मुझे मौका दे, अगर ये चीज़, ये कोई रिलेशन, ये कोई दोस्ती, ये कोई खाने की चीज़, कोई भी चीज़ अगर मुझे आपसे दूर करती है तो मुझे उससे दूर कर दे। बात करें इमाम ज़माना से, बात करें जाने वाले, वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हम समझते हैं हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब आएंगे उस तरफ। तो अगर हम अपने जहन को दुनियावी आलूदगी से पाक करेंगे तो ये अकल रुश्द करेगी, अपग्रेड होगी, और जब ये अकल अपग्रेड होगी तो ये मुशायदा करेगी इमाम का, ये खुद इमाम को देखेंगे, इमाम तक पहुंच जाएंगे जाने इमाम तक। बड़े बड़े उलमा, हत्ता जवान, जवानों के वाकयात आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं, जवान शहदा के वाकयात, ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि इंसान वाकई इस दौर के अंदर भी इतने वाकयात हैं जवानों के, क्योंकि अपने इमाम की कुर्बत के लिए तैयार है, अपने इमाम तक जाना चाहते हैं। अब ये देखिए बड़ा जो जवान ये हमारे दरमियान में था, हमजा, ये ताबूत कमेटी में भी था, आलम भी बनाता था, कुछ हुसैन के अंदर भी था, भी मैं उनके वालिद से मिलकर आया, उनकी वालदा ने मुझे बताया कि मौला इमाम रजा अलैहिस्सलाम या इमाम की विलादत थी, तो उसने अरे विलादत है तो हरम देखा होगा, तस्वीर देखी होगी, वीडियो, तो कहा उसका बड़ा दिल चाहगा मुझसे सब्र नहीं होता कि मैं मौला की ज्यारत में जाऊं, और बस कहते हैं उसी शाम को उसका एक्सीडेंट हुआ और वो इंतकाल कर गया। तड़प तड़प चाहिए, यकीनन वो हमसे अच्छी जगह पर, मैंने उनके वालदा को बोला वो हमसे अच्छी जगह पर, हम फंसे हुए मन माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद।

बेटा वैसे भी हादसे की मौत, अहले बैत की मोहब्बत की मौत, जिंदगी अहले बैत के रस्ते में गुजारी जाए तो शहादत ही है ना। हम फंसे हुए, हमें अपने आप को इमाम तक लेके जाना है। अजाने मोहतरम, अब आप देखें करबला ऐसी ही दास्तान है जहां पर हर माँ ने अपने बच्चों को इमाम तक पहुंचाया। बहुत सारे लोग हैं करबला में आपके सामने, मखसूस शबें जो है वो शुरू हो गई है शहादत के अयाम में। आप देखिए करबला का जो करबला, करबला विमान अगर जैनब ना हो, करबला करबला में रह जाती अगर जनाब जैनब नहीं होती, रह जाती करबला। पूरी यजीद की जितनी मेहनत थी, जितना उसने सोचा, कितना उसने काम किया, सब को खत्म कर दिया जनाब जैनब। वो समझा इमाम हुसैन को खत्म कर देंगे, ये सब करबला में रह जाएंगे, खवातीन को असीर कर लेंगे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इमाम अपने साथ किसे लेकर आए। रोकने वालों ने तो रोका, कई लोगों ने आप जा रहे हैं तो खवातीन और बच्चों को तो छोड़ जाएं, लेकिन इमाम जानते थे कि ये करबला का पैगाम दुनिया में कैसे जाएगा, उसकी तैयारी थी। जनाब जैनब का किरदार जाने मोहतरम बहुत जरूरी है। देखिये हमारे पास दो रास्ते हैं, इमाम हुसैन का रास्ता, अपने आप को उस रास्ते पर ले जाओ, काम करो कि शहीद हो जाओ, शहीद हो जाओ, इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। और अगर जब तक जिंदा हो तो जैनबी रास्ता इख्तियार करो, काम करो, तबलीग करो, मेहनत करो, दुश्मन को ललकारो, दुश्मन को पहचानो, उसकी साजिशों को ख़त्म करो। वो ब्रेन की ज़रूरत है ना, स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। आज आपके सामने देखें हालात, बहरहाल आपके सामने मुल्क के अपने मसाइल होते हैं, हमारे अपने मसाइल, कहीं कहीं आप देखें कि बहरहाल देखें तशय्यो तो है भी वही ना। हम आज तक मौला अली के कातिल को नहीं भूले, हम आज तक इमाम हसन के कातिलों को नहीं भूले, हम आज तक इमाम हुसैन के कातिलों को, हम किसी इमाम के कातिल को नहीं भूले, आज तक नहीं भूले, आज तक हम उसको याद रखते हैं, इंतज़ार उसी का कर रहे हैं जो बड़दाए गैबत से आएगा, इन सब के कतलों का बदला लेगा। मुंतकिल, इमाम का नाम मुंतकिल ये, तो हम कैसे हो सकता है कि नायब इमाम के कातिल को भूल जाए, कैसे हो सकता है कि हम ये भूल जाए कि अमरीका ने हमारे मराजे को, हमारी विलायत जैसी शख्सियत को, हमारे रूहानी बाप को। जाहिर है देखिए हर फिरके का कोई ना कोई तो जाहिरी एक पेशवा होता ही है ना, अब कोई सियासी तौर पर माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूहानी पेशवा तो होता ही है। और वो शख्सियत के जिसको पूरी दुनिया मानती हो, सुन्नी भी मानता है, शिया भी मानता है, क्रिश्चियन भी मानता है, हिंदू भी मानते हैं कि भाई जवान मर्द यही था, शुजात इसी के पास थी, छुप के नहीं बैठा, खड़ा रहा अपने मौला की तरह, रास्ता वही था। अब अगर कोई उसको मार दे तो क्या हम उसको भूल जाए, भूल जाएगा, नहीं भूलेंगे हम। अब आप हम अगर कहीं मुर्दाबाद अमरीका लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, ठीक है मुश्किलात होंगी, होती रहे, दुनिया भर में मुश्किलात होती हैं, वो इंसान देखे, इंसान को एक वक्त आता है अपनी आइडियोलॉजी को साबित करना पड़ता है। आपको जिंदगी में एक वक्त आएगा कि आपको ये फैसला करना है, या मैं अपने अकीदे पे कायम रहूं या फिर अपनी दुनिया ले लूं। करबला ये सिखाती है, अगर अकीदा है तो फिर सब कुछ है, और अगर अकीदा नहीं है तो बेच दो फिर जो बेचना है। कूफा वालों ने तलवारें बेच दी, मुस्लिम को अकेला छोड़ दिया, तो आप भी बेच दो फिर। तो अब अगर वो कातिल है, कहीं झंडा लगा हुआ है, हुकूमत आके उगाड़ रही है, पुलिस आके उतार रही है, तो आप उतारते जाओ भाई, हम तो लगाते रहेंगे। तो मैं जवानों से कहूँ डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी करो। रूहानी पेशवा है जाने मोहतरम, आप कैसे किसी कौम किसी मिल्लत से उसके रूहानी पेशवा की ताकत छीन सकते हैं, कैसे छीन सकते हैं आप? अगर आज हम सईद मुश्तबा खामनाई की तस्वीर लगा रहे हैं, हमारा रूहानी पेशवा है। हर किसी का जाहिरी तौर पर इमाम होगा, होगा सबका, बोरियों का इमाम, इस्माइलियों का इमाम, सबका इमाम, तो हमारे इमाम की तस्वीर आपको क्यों छुपती है?

क्यों चुभती है आपको? आपको तो शुक्र करना चाहिए आपके लिए उन्होंने, आप इस काबिल देखे जाने मोहतरम, आज पाकिस्तान को कितनी इज्जत मिली, पाकिस्तान को किसने इज्जत दी, किसने इस्तेकामत दी? ठीक है, इसमें हमारी फौज का अच्छा किरदार है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का अच्छा किरदार है, मगर जो नीचे बैठे हुए उनको समझ में नहीं आता। इस बुग्स को ख़त्म कर दें उम्मत से। अगर दुनिया में इस्लाम को कोई बचाएगा तो ये अली वाला बचाएगा। दो ही रास्ते, या हुसैनी शहीद हो जाओ, शहीद हो जाओ, जितना मारोगे उतना उभरेंगे, जितना काटोगे उतना बिखरेंगे। हम मरने वाले नहीं है, ना हम खत्म होने वाले, हम कयामत तक ऐसे ही रहेंगे। यह जनाब जैनब की तरह यजीद के दरबारों को ललकारते रहो, उसको खामोश हो जाओ, खामोश थे। दौर जीने का दौर है, दौर निशात तशय्यो का दौर है, दुनिया को बताना है, हक्कानियत इसी के अंदर है, यही हक है। मौला मुत्तकियान हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कि जन्नत में कोई दाखिल नहीं हो सकता, या जन्नत में सिर्फ वो दाखिल होगा जिससे हम पहचानते होंगे, जो हमें पहचानता होगा, कोई दाखिल नहीं हो सकता। यानी इमाम को ऐसा नहीं है कि आप बोले मैं इमाम को बैठ, नहीं, मोहब्बत दोनों तरफ से। अगर हम इमाम से मोहब्बत करते हैं तो इमाम भी हमसे मोहब्बत करता है, नहीं हो सकता इंसान। और जो जन्नत के सरदार हों उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आपका वक्त लिया, जाने मोहतरम, दर्द दिल था भरा, बयान करना था वरना दिल में रह जाता, और वैसे ही दिल आजकल बहुत नाजुक है, बहुत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपनी पूरी जिंदगी अपने इमाम के लिए है। 28 रजब आप जानते हैं, जब इमाम ने वो पढ़ा कि कौन कौन जाएगा, देखा जनाब ज़ैनब का नाम नहीं है, अचानक से भाई के पास आई, भाई मेरा नाम, कहा आप जनाब अब्दुल्ला के अक्त में हैं, आप अपने शौहर से, शरीयत भी यही कहती है, बेशक इमाम है, शरीयत यही कहती है और इमाम भी शरीयत के पासदार है, अपने शौहर से पूछिए, शौहर अगर आपका इजाज़त दे। आप जानते हैं जनाब अब्दुल्ला मरीज हैं, उनको जो है वो कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं थी, खशी की हालत में, ये कहती हैं उनके किनारे जाकर बैठ गई, सिसकियाँ लेने लगी, सिसकियाँ लेते लेते गिरिया किया, गिरिया करते हुए आंखों से आंसू निकला, आंसू जैसे ही जनाब अब्दुल्ला को आंख खुल गई, कहा शहजादी क्या हो गया? कहा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे, सुनना था तो कहा दिल, कहा आप इजाजत, कहा शहजादी ये तो मौला ने निकाह पढ़ाते हुए शर्त रखी कि आपको हुसैन के साथ जाने दूंगा, खाब जाए। बीवी जाने लगी तो फिर आवाज दी, शहजादी रुकी, सोची कि शायद कहीं पता नहीं जो कहा है राधा बदल न गया और शौहर है, कहा ये दो निशानियां हमारे लिए जाएंगे, मोहम्मद और
جب وقت پڑے

बच्चे कैसे आ गए? जैसे ही जाकर देखा एक तरफ ओमन का बदल है, एक तरफ मोहम्मद का बदल है, दरमियान में इमाम हुसैन सर झुकाए करे, बहन से आंखें नहीं मिला रहे, जनाबे जैनब ने बदलों को किनारे किया, सर सजदे में रखा, कहा परवरदिगार तेरा शुक्र तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। बस अभी शबीर ताबूत बस एक दो मराहिल और है, आपसे तमाशे दुआ। जनाबे जैनब रोजे आशूर अपने बच्चों पर गिरिया नहीं किया, गिरिया नहीं किया, रोती रही, कासिम को रोती रही, अगर हुसैन का बेटा अकबर पर तो जान कुर्बान, रोती रही अब्बास के बच्चों में, सब पर गिरिया किया, हुआ बहला। और वो जो गिरिया था जनाबे ज़ैनब था, वो जो 11 मुहर्रम को सवारी से नीचे गिराकर अपने भाई के बदन की हालत को देखकर हासन हुसैन हुसैन है मुरम्मल पे दबा खून में गलती का खाक करबला की, हुसैन वो गिरिया किया, दुश्मन रोने लगा, सवारी उतरी कूफा शाम जिंदान अरबईन में पलटी, गिरा दिया भाई के बदन पर, बच्चों को ना भी, बच्चों को ना भी, मदीना पहुंची, मदीना के दरवाजों को देखा, वे जनाबे वाले पुत्रों का मशहूर जुमला है ना, ऐ मदीना किस सर के ताजों के साथ गए थे, खाक के साथ आ रहे थे मदीना। अदारे मोहतरम वो जैनब जिसने पूरे इस रास्ते पर गिरिया नहीं किया, जब मदीना पहुंची नाना के रोजे पर रो लिया, अब जब घर में गई बुजुर्गों को देखा, बिस्तरों को देखा, चीजों को देखा,